मन क्रम बचन विचार चौपाई मैं नाग ने सह प्रथम मनाऊ किसन विसन कब हूं नह त्याऊ कान सुने पहचान न तिन सो लिव लागी मोरी पागे न सो।

कालपुर की देहे कोटक विष्णु महेश कोटेंद्र ब्रह्मा किते रवसस क्रोर जलेश दोहरा राम कथा जग जग अटल सब कोई पंख तनेत स्वर्ग बास रग भर करा सगरी पुरी समेत चौपाई जो एक कथा सुने अर गावे दुख पाप ते निकट ना आवे विष्णु भगत की ये फल होई आद ब्याद शब सके न कोई संबत सत्रह सहस चावन हाड़वदी प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा फूल प्री लो लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तोंग के चरण तर तद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुबर कथा प्रसंग साध साध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाई गए जब ते तुमरे तब ते कुआं तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान ने कैम तेक न माने ओ

सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा।

को रेस अनेक बाबा जय कर करते तीर्थ होए सो कर राखवडाई तो रहाओ विश्वय चसया कड़िया पहरा तिती वारी माह हुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते किते वेस राग तनासरी महला पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मालियां लो पवन चबरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पवखंडा तेरी आरती अनहता सुदवाजंत भेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त ननायक तोहे सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध विचलत मोहि सब में जोत जोत है सोए इस जा चानन सब में चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए ज्योत स्पा वैसो आरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मह

गए मुसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जरी नाम ते आया गए मुसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

ब्रह्म परम हृदय नमो शस्त्र पाणी नमो अस्त्र माणी नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता पेकी परमी भोगी भुगतई नमो जोग जोगे सुब्रम परम जुगतई नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत पे देवी सुतर्मे नमो रोग हरता रो राग रूपे नमो साह नमो पू पू पे नमो दान दानी नमो मान माने नमो रोग रोगी नमो स्तनिष्णान नमो मंत्र मंत्रम नमो जंत्र जंत्रम नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रम सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्धता बोधता वृद्ध करता अदो उर्ध अर्धम अगम ओघर्ता परम परम परमेश ब्रह्म पुरुष पालम सदा सर्वदा सद्दाता दयालु अछेदी भेदी अनाम काम समस्त अपराधी समस्त स्थावम तेरा जोर चात्री छंद जले है थले है पीत है पिय प्रभु है जू है दिस है पिस है पुजह प्रया छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नव सर्वमान्य समस्त निदाने नमस्तवंग नाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंधे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग काले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोक रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो प्रमतांग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृश्यंग नमो सर्वकृष्यंग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीव नमो बीज बीजे अखिजे भिजे समसु प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सदंग निवासी।

चक्कर बकर फिर चतर चक मन ही पुर तीनों लोग चौदह के बिकाय जग जाप जह जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जिथाप परम रूप पनीत मूर्त पूर्ण प्रकोपाल सर्व सर्वच सुजयम पहुगंड पंजनहार कालहीन कलाश निवृत काल पुर का देश धर्म धाम स परम रत पुत रख पेस अंग रंग जाक जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भजन मुक्त दय काम आप रूप निकान सुजक मुख अवधूत है गर्भ गंजन सर भंजन आदि रूप सूत अंगहीन भागनात्मिक पुरख पारु सर्व लायक सर्व काय सर्व को प्रत पारु सर्व गंता सर्व हंता सर्व त्यन भेख सर्व शासना जान

प्रणाम ने पहने कामात प्रजानमित कद अखंड वाल सह कर्मा दृष्टा धर्म सर्वा परना डै अंडन बाडैंग चाचरी छंद प्रसाद गोविंद मकंद उदारी अपारी हरियम करियम नामे अकामी पुजन प्रयात छंद चतर चक्र करताओ चतर चक्र हरताओ चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाली चतुर चक्र काली चतुर चक्र पासी चतुर चक्रवासी।

त्रय प्रतिष्ठा अधिष्ठा अदृष्टा कृष्णा भगवती छंद प्रसाद करते के अक्षज दिशा के अपिज पिशा के अगंज कर्म के अपंज भरम के अपिज लोक के अदित सुख के अभूत वर्ण के अभूत करण के राजन प्रभा के त्रमंग तुझ के सुख वर्ण के सर्वा प्रण के जगत कृत्य के छत्रंग क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप के अनपहन के आदिव के आपोपीव के छत्रंग विहीन के कादीन के रोजी रजा कर ही मरहा के कपाक ब्यावे के ज्ञापन ग्यावे के अपन गुनाह के साहन साह के कारण अपनिंद के रोजी दे हंद है राज करीम के कर्म करीम के सर्वम कली है के सर्वम दली है के सर्वत्र माने के सर्वत्र दाने के सर्वत्र गौना के सर्वत्र पौना के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पिसा के सर्वत्र राजा के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र दिशा के सर्वत्र पिशा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र कांज के सर्वत्र राजा के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र दिशाएं के सर्वत्र पिसाएं के सर्वत्र माने सदा प्रधान के सर्वत्र जापे के सर्वत्र थापे के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्राय के सर्वत्र चंद्राय के सर्वम कलीम के परम अफीम के आकुल अलाम के साहब कलाम के हुसन वजू है तमाम हमेशन सलाम सलीखत बदाम गरीब गरीबल प्रस्त बिलांदल मकाना जिमर जमाना

सदगुरु प्रसाद पातशाह ही दसवी तुआ प्रसाद सवैये सराबग सुद समूह सुधन के दीख फिर उपकार जोग जति के सूर सदार्दन सुद सुधाधक संत समूह अनेक पति के सारे ही देश को देख रहे मत कौन अधिक प्राण पति के श्री भगवान की पाई कृपा होते कृति बिने कृति के माते मतंग जरे जर संग अनुपातंग सरंग सवारी कोट तरंग कुरंग सी कूदत पवन के गौन को जात नवारी भारी भजन की भू भरी बेद न्याव शीस न जात बिचारे इति भय तु काह भय भूपत अंत को नांगे ही पाए पधारी जीत फिरा सब दे सर को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजानक सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भगवान के भूपत कौन गणन जात बचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दया दमदान सो संजमने अने

तक देखा है, श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिखा है। शुद्ध सिपाहा दुरंत दुबाह सुशासना दुर्जान दलांगे, भारी मन पर मर मैं कर पर्वत पंख हले न हलांगे, तोर अरीन मरोर मुआसन माते मतंगन मान मलांगे। श्री पात श्री भगवान कृपा बेनू त्याग जहान दान चलांगे, वीर पार बड़े बड़े अरब चार हजार की धार पछैया, तोर देश मिले दुवासन मातिक जान के मान मलैया। गाड़ गड़ियन के तोड़ महाद सो बात नहीं चक चाण लवैया, साहब श्री साहब को सरनायक जाचक अनेक सुख दवैया। दानव देव फणिंद्र साचर भूत भगवान जपांगे, जीव जीते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपांगे। पुन प्रतापन बाढ़ जा धन पापन के बहुपुंज खपाएंगे, साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्तर सबाए अवलोक चपाएंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नारद पव जौन त्रिलोक को राज करांगे, कोट स्नान गुजात विदान अनेक स्वयं बरसात बरांगे। ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पथ अंत फसे जम फास परांगे, जी नार श्री पथ के प्रस है पागु ते नर फिरन देह तरांगे। कहाँ पयो जो दो लोचन मुंद कै बैठे भक्त अन्न गायो, नाथ फिर लिये सा समुद्र लोग पर लोग गवायो। बास की बिखे अण सो बैठ गए, ऐसे ही ऐसे सो बैठ बितायो, सांच कहूं सुन ले हो सब है।

चौन चौन सत्र हमारे मारिया है आप हाद मुझे अभरिया मरण काल का त्रासन भरिया हूँ जोसदा हमारे पछाओ श्री अस तो दिजो कर हो रक्षा राख ले हो मोह राखण हारी साहिब संत सहाय प्यारी दीन बंद दुष्टन के हंता उत्तम हो परी चातर दस कंता काल पाए ब्रह्मा मगतराम काल पाए शिवजू अवतराम काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का की आत्मा सा

ज्ञान सुधारा सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंक तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह माते एक न बने ओ सिमरत शास्त्र वेद सबै भो भेद कह हम एक न जाने ओ।

जित अंत पछोताइया। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।

सच समाणी जन्म रतन जिन्नी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुरु के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मा संभाले आप छड सदा रह परने गुरबिन अवरण जाने कोई कह नानक सुनो संतोषो सिख सन।

हर हर नित करे रसना कहया कसुन जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पे रवानी कह नानक सदगुरु बाजों

विसारिय एवड दाता जे अग्न में आहार पहुंचावे। ओसनो कह पो ना सकी जिसनो अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है। कह नानक एवड दाता सो क्यों मनो विसारिय। जैसी अग्न उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अग्न सबको जे ही करता खेल रचाया। जातस पाना ता जम्या परवार भला पाया। लेव छुड़की लगी तर

ऐसा सतगुरु जे मिले तिसनु सिर सौंपिए विचो आप जाए तिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मनाए हर आप मुल्क है भगत ना के नानका जिन हर पल पाए हर रास मेरी मन मन जारा हर रास मेरी मन मन जारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपियो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी ए तन तिन्ना मिलिया जिन हर आपे पाणा कह नानक हर रास मेरी मन हो वावन जारा ए रसना तू अनरस राज रही तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए होर त किते जिचर हर रस पल्ले ना पाए हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बोर न तसना लागे आए एहो हर रस करमी पाए सतगुरु मिले जिस आए कह नानक होर अनरस विसरै जार वस मन आए ए शरीरा मेरिया तुम जोत रखी ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मैं आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मैं आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत रखी ता तू जग मैं आया मन चाओ भया प्रभा गुण सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्या पे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पर जा पे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभा मिलिया करण कारण सो जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह कह तद कर्म कमाया

कहे नानक हर प्यारा जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पणु जाया एहो साचा सोहला साचे कर गावो गावो ता सोहला कर सच जिथे सदा सच ध्यावहे सचो ध्यावे है जा तद भावे है गुरमुख जना बुझावे ए सच सबना का खसम है जक बख्शे सोजन पावे।

पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजर पहे सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सदगुर रहे आपर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे।

0: आओ
1: साम कैसे तुम स्वामी सच में अच्छे सच रहे सब को सच समावे ऋग कह रहे भरपूर राम नाम देवा में सूर नायले प्रचित जाय नानक तो मुखंतर पाय जुज में चोर छली चंद्रावन कान कृष्ण जादुम पहया।

0: सब कोय। सूत क्यों कर रखी है सूत पवर सोय, नानक सूत के उतरे ज्ञान तारे तो महला पहला।
1: मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना पर त्रै पर धन रू कन्नी सूत।

बस मैं करे बराबरी फिर गैर तंदर पाए वजो गवाए अगला मुहिम पान खाए जिस दादता खावना तिस कई ऐसा बास नानक हुक्म।

जो हमारी बेद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जान हो आपे हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता।

अचिंत ठाकुर पेटे गुणतास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरता पाया सहज सेती। मन वजिया वादाहिया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावने आईया। शब्दो तां गावहो हरि केरा, मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होआ। सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार ओहो करे तेरा, कार्य सब सुवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही, घर तेरा करता तेरा, सब किच है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सचे साहिब क्या नाही, घर तेरा साचा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया, कर सांत सुख मन आए वसया। जिन इच्छा सब पुजाईया, सदा कुर्बान कीता गुरु बिटा हो। जिस दिया एह वड्याईया, कह नानक सुनो संत हो। शबद तरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शबद तित कर सुभागा, कर सुभागा शब्द वाजे, कला जित करत हरी। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन कहो, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनहो वड भागी हो, सगल मनोरथ पू

सुरत शाड विख विख खाई माया मोह परम पै फूले सत द्वारा से प्रीत लगाई

गैम सतत तार नानक के मुख उजले केति छुट्टे ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।